को आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब हिता मना जन जीवन घन ये करम भक्त जन जीवन घन ये करम राम राम राम श्री राम राम